बड़ा चित चौरा वृंदावन संचारा, बड़ा चित चौरा वृंदावन संचारा। गोपाला गोपाला हे मुरली गोपाला, गोपाला गोपाला हे गोवर्धनोद्धार गोपाल बाला, गोपी मनोहर राधे गोपाला, गोपी मनोहर राधे गोपाला, बड़ा

नदर करे सतगुरु मिलाए, नानक हिरदा नाम वसाए, पहरो महला तीजा। नामे उदरे सब जितने लो, गुरमुख जिन्ना प्राप्त होए। हर जीव अपनी कृपा करे, गुरमुख नाम वड्याई दे रहाओ। राम नाम जिन प्रीत प्यार, आप उदरे सब कुल उधारनहार। बिन नावें मनमुख।

सगल पराध देहे लोरोनी सो मुख जलो जित कह है ठाकर जोनी। जन्म ना मरे ना आवह ना जाए नानक का प्रभरे उसमाए पैरव महला पंजवा। उठत सुखिया बैठत सुखिया पौ नहीं लागे जा ऐसे बुझिया। और आखा एक हमारा स्वामी सगल घटा का अंतर जामी रहाओ। सोए अचिंता जाग्या चिंता जहां कहां प्रभ तू वर्तनता। घर सुख वसया बाहर सुख पाया कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया। पहराओ महला पंजवा वर्त ना रहो ना महरम दाना ते सेवी जो रखे निदाना। ए गोसाई अल्लाह मेरा हिंदू तुर्क दुहाने बेरा। रहाओ हज काबै जाओ ना तीर्थ पूजा एको सेवी अवर ना दूजा। पूजा करो ना निवाज गुजारो एक निरंकार लेर दे नमस्कारो। ना हम हिंदू ना मुसलमान अल्लाह राम के पिंड पुराण। कहो कबीर एहो किया वखाना गुर पीर मिल खुद पछाना। पैरो महला पंजवा दस मिर्गी सहजे बंदयानी पांच मिर्ग बेदे सेवकी बानी। संत संग ले चढ़ो शिकार मृग पकड़े बिन कोर हथियार। रहाओ अखेर बिरत बाहरे आयो ताए अहेरा पायो कर कै गाए। मृग पकड़े कर आने हाट चुख चुख ले गए बांडे बाट। एहो अहेरा की नो दान नानक कह कर केवल नाम। पैरो महला पंजवा जे सौ लोच लोच खावाया सागत हर हर चीत ना आया। संत जना की लेहो मते साध संग पावो परम गते। रहाओ पाथर कौ बहु नीर पवाया नह पीगे अधिक सुकाया। खट शास्त्र मूर्ख है सुनाया जैसे दैदस पवन चुलाया। बिन कण खलहान जैसे गह न पाया त्यों साकत ते को न बरासाया। तित ही लागा जित को लाया कहो नानक प्रबणत बनाया। पैरो महला पंजवा जियो प्राण जिन रचियो शरीर जिनै उपाय तिसको पीर। गुरु गोबिंद जी कै काम हलत पलत जाकी सदशाम। रहाओ प्रभ आराधन निर्मल दीत साध संग बिनसी विपरीत। मीत हीत तन नह पारना तन तन मेरे नारायणा। नानक बोलै अमृत बाणी एक बिना दूजा नहीं जानी। पैरो महला पंजवा आगे दय पाछे नारायण मध पाग हर प्रेम रसायण। प्रभु हमारे शास्त्र साउण सुख सहजानंद ग्रह पाउण। रहाओ रसना नाम करन सुन जीवे प्रभ सिमर सिमर अमर थिर थीवे। जन्म जन्म के दुख निवारे अनहद शब्द बजे दरबारे। कर कृपा प्रभ लिए मिलाए नानक प्रभ शरणागत आए। पैरो महला पंजवा कोट मनोरथ आवै हाथ जब मार कै संगी पांथ। गंगा जल गुरु गोबिंद नाम जो सिमरै तिसकी गत होवै। पीवत बहुना जोन प्रमाम। रहाओ पूजा जाप ताप इशनान सिमरत नाम पय निहकाम। राजमाल साधन दरबार सिमरत नाम पूर्ण आचार। नानक दास एहो किया विचार बिन हर नाम मिथ्या सबसार। पैरो महला पंजवा लेप न लागो तिल का मूल दुष्ट ब्राह्मण मुआ होए कैसूल। हर जन राखे पार ब्रह्म आप पापी मुआ गुर प्रताप। रहाओ अपना खसम जन आप ते आया याना पापी ओ आप चाया। प्रभ मात पिता अपने दास का रखवा।

नाम बिना सब दुनिया शार। अचरज तेरी कुदरत तेरे कदम सलाह, गनीम तेरी सिफत सच्चे पातशाह। नीत हरिया तरपन है खुदाए, गरीब निवाज दिन रहन ते आए। नानक कहो खुद खसम मेहरबान, अलो न विसरै दिल जी प्राण। पहरो महला पंजवा, साज पदार्थ गुरमुख लहो, प्रभ का पाणा सतकर सहो। जीवत जीवत जीवत रहो, राम रसायन ने तुठ पीवो। हर हर हर हर रसना कहो रहाओ, कलयुग मै कनाम उदार। नानक बोलै ब्रह्म विचार, पहरो महला पंजवा। सतगुर सेव सर फल पाए, जन्म जन्म की मैल मिटाए। पदत पावन प्रभ तेरो नाओ, पूर्व कर्म लिखे गुण गाओ। रहाओ साधु संग होवै उदार, सोभा पावै प्रभ कै द्वार। सर्व कल्याण चरण प्रभ सेवा, तूर बंश है सब सुर नर देवा। नानक पाया नाम निधान, हर जप जप उदरिया सगल जहान। भैरो महला पंजवा, अपने दास को कंठ लगावै, निंदक अगन में पावै। पापी ते राखे नारायण, पापी पापी की गत कथू नाही। पापी पचया आप कमायण, रहाओ दास राम जीओ लागी प्रीत। निंद की होई विपरीत, पार ब्रह्म अपना बिरद प्रगटाया। दोखी अपना कीता पाया, आए ना जाई रहया समाई। नानक दास हर की सरनाई, राग पहराओ महला पंजवा। चौप दे कर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। श्री धर मोहन सगलियो पावन, निरंकार सुखदाता। ऐसा प्रभ छोड़ करे अन सेवा, कौन बिखिया रस माता। रे मन मेरे तू गोविंद पाज, अवर्यो पाव सगल मैं देखे। जो चितवीय तित बिगड़ सकाज, रहाओ ठाकर छोड़। दासी को सिमरै मनमुख अंध अज्ञाना। हर की भगत करै ते निंदै, निगुरे पशु समाना। जियो पिंड तन तन सब प्रभ का, सागत कहते मेरा। अहम बुद्ध दुर्मत है मैली, बिन गुर भव जल फेरा। होम जग जप तप सब संयम, तट तीर्थ नहीं पाया। मिटाया पय सरनाई, गुरमुख नानक जगत राया। पहरो महला पंजवा, बर मैं पेख्यो तरण मैं पेख्यो, ग्रह पेख्यो उदासाए। दंड तार जड तारै पेख्यो, वर्त नेम तीर्थाए। संत संग पेख्यो मन माए, ऊब पयाल सर मैं पूर्ण। रस मंगल गुण गाए, रहाओ जोग पेख सन्यासै पेख्यो। जत जंगम कपड़ाए, तपी तपी सरमन मैं पेख्यो। नट नाटक निरताए, चहो मैं पेख्यो खट मैं पेख्यो। दस अष्टी सिमरताए, सब मिले को एक बखाना। तो किसते कहो दुराए, अगह अगह बेअंत स्वामी। न कीम कीम कीम आए, जन नानक तन कै बल बल जाइए। जेह कट प्रगटी आए, पहरो महला पंजवा। निकट बुझै सो बुरा क्यों करै, बिख संचै नित डरता फिरै। है निकट यार भेद न पाया, बिन सतगुर सा मोही माया। नेड़ै नेड़ै सब को कहै, गुरमुख भेद बिरला को लहै। रहाओ निकट ना देखै पर ग्रह जाए, दर भिरै मिथ्या कर खाए। पई ठगौरी हर संग ना जानिया, बाज गुरु है परम पुलानिया। निकट ना जाने बोले कूड़, माया मोहे मूठा है मूड़। अंतर वस्त दिसंतर जाए, बाज गुरु है परम पुलाए। जिस मस्त कर्म लिखिया ललाट, सतगुर सेवे खुले कपाट।
ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਟੇ ਸੋਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਵੈ ਕੋਏ, ਪਹਿਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਰਾਖੈ ਤਿਸ ਕੌਣ ਮਾਰੈ, ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਅੰਤਰ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਕੋਟ ਪਾਵ ਚਿਤਵਤ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਸੋ ਹੋਵੈ ਜੇ ਕਰੈ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣੀ। ਰਾਖੋ ਰਾਖੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ, ਰਹਾਉ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਨਿਰਭਉ ਸੁਖਦਾਤਾ, ਤਿਨ ਭਉ ਦੂਰ ਕੀਆ ਏਕ ਪ੍ਰਾਤਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਰੈ ਸੋਈ ਫਨ ਹੋਏ, ਮਾਰੈ ਨਾ ਰਾਖੈ ਦੂਜਾ ਕੋਏ। ਕਿਆ ਤੂੰ ਸੋਚੈ ਮਾਨਸ ਬਾਣ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਣ, ਏਕ ਟੇਕ ਏਕੋ ਆਧਾਰ, ਸਭ ਕੇ ਜਾਣੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਜੇਸੀ ਉੱਪਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਕਰਤਾਰ, ਤਿਸ ਜਨ ਕੇ ਸਭ ਕਾਜ ਸਵਾਰ, ਤਿਸਕਾ ਰਾਖਾ ਏਕੋ ਸੋਏ, ਜਨ ਨਾਨਕੇ ਪੜ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ। ਪੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਤੌਕੜੀਐ ਜੇ ਹੋਵੈ ਬਾਹਰ, ਤੌਕੜੀਐ ਜੇ ਵਿਸਰੈ ਨਰਹਰ, ਤੌਕੜੀਐ ਜੇ ਦੂਜਾ ਪਾਏ, ਕਿਆ ਕੜੀਐ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ। ਮਾਇਆ ਮੋਹੇ ਕੜੇ ਕੜ ਪਚਿਆ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਭ੍ਰਮ ਭ੍ਰਮ ਭ੍ਰਮ ਖਪਿਆ, ਰਹਾਉ ਤੌਕੜੀਐ ਜੇ ਦੂਜਾ ਕਰਤਾ, ਤੌਕੜੀਐ ਜੇ ਅਨਿਆਏ ਕੋ ਮਰਤਾ, ਤੌਕੜੀਐ ਜੇ ਕਿਹ ਜਾਣੈ ਨਾਹੀ, ਕਿਆ ਕੜੀਐ ਜਾਂ ਭਰਪੂਰ ਸਮਾਹੀ। ਤਉ ਕੜੀਐ ਜੇ ਕਿਛ ਹੋਏ ਤਿੰਘਾਣੈ, ਤਉ ਕੜੀਐ ਜੇ ਭੂਲ ਰਜਾਣੈ, ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਜੋ ਹੋਏ ਸਭ ਪ੍ਰਭ ਤੇ, ਤਬ ਕਾੜਾ ਛੋੜ ਅਚਿੰਤ ਹਮ ਸੋਤੇ, ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਹੈ ਠਾਕਰ ਸਭ ਕੋ ਤੇਰਾ, ਜੋ ਪਾਵੈ ਤਿਉਂ ਕਰੈ ਨਿਬੇਰਾ, ਦੁਤੀਆ ਨਾਸਤ ਇਕ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ, ਰਾਖੋ ਪੈਜ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਏ, ਪੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਬਿਨ ਬਾਜੇ ਕੈਸੋ ਨਿਰਤਕਾਰੀ, ਬਿਨ ਕੰਠੈ ਕੈਸੇ ਗਵਨਹਾਰੀ, ਜੀਲ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਬਜੈ ਰਬਾਬ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਜ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕਹੋ ਕੋ ਤਰਿਆ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈਸੇ ਪਾਰ ਪਰਿਆ, ਰਹਾਉ ਬਿਨ ਜਿਹਵਾ ਕਹਾਂ ਕੋ ਬਗਤਾ, ਬਿਨ ਸ੍ਰਵਣਾ ਕਹਾਂ ਕੋ ਸੁਨਤਾ, ਬਿਨ ਨੇਤਰਾ ਕਹਾਂ ਕੋ ਪੇਖੈ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਨਰ ਕਹੀ ਨਾ ਲੇਖੈ, ਬਿਨ ਵਿਦਿਆ ਕਹਾਂ ਕੋਈ ਪੰਡਿਤ, ਬਿਨ ਅਮਰੈ ਕੈਸੇ ਰਾਜ ਮੰਡਿਤ, ਬਿਨ ਬੂਜੇ ਕਹਾਂ ਮਨ ਠਹਿਰਾਨਾ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਜਗ ਬੋਰਾਨਾ, ਬਿਨ ਬੈਰਾਗ ਕਹਾਂ ਬੈਰਾਗੀ, ਬਿਨ ਹਉ ਤਿਆਗ ਕਹਾਂ ਕਉ ਤਿਆਗੀ, ਬਿਨ ਬਸ ਪੰਚ ਕਹਾਂ ਮਨ ਚੂਰੇ, ਨਾ ਬਿਨਾ ਸਸਦ ਹੀ ਚੂਰੇ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਕੈਸੇ ਗਿਆਨ, ਬਿਨ ਪੇਖੇ ਕਹੁ ਕੈਸੋ ਧਿਆਨ, ਬਿਨ ਪੈ ਕਥਨੀ ਸਰਬ ਬਿਕਾਰ, ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਦਰ ਕਾ ਵਿਚਾਰ। ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਹਉ ਮੈਂ ਰੋਗ ਮਾਨਖ ਕਉ ਦੀਨਾ, ਕਾਮ ਰੋਗ ਮੈਂਗਲ ਬਸ ਲੀਨਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰੋਗ ਪਚਮੋਏ ਪਤੰਗਾ, ਨਾਦ ਰੋਗ ਖਪ ਗਏ ਕੋਰੰਗਾ, ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ, ਰਹਾਉ ਜਿਹਵਾ ਰੋਗ ਮੀਨ ਗ੍ਰਸ ਆਨੋ, ਬਾਸਨ ਰੋਗ ਭਵਰ ਬਿਨਸਾਨੋ, ਹੇਤ ਰੋਗ ਕਾ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰਾ, ਤ੍ਰਿਬਧ ਰੋਗ ਮੈਂ ਬਧੇ ਬਿਕਾਰਾ, ਰੋਗੇ ਮਰਤਾ ਰੋਗੇ ਜਨਮੈ, ਰੋਗੇ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਭਰਮੈ, ਰੋਗ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਰਤੀ ਨਾ ਪਾਵੈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਰੋਗ ਕਤੈ ਨਾ ਜਾਵੈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਸ ਕੀਨੀ ਦਇਆ, ਬਾਹਾਂ ਪਕੜ ਰੋਗੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਟੂਟੇ ਬੰਧਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਇਆ, ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਰੋਗ ਮਿਟਾਇਆ। ਪੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਚੀਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਮਹਾਂ ਆਨੰਦ, ਚੀਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਸਭ ਦੁੱਖ ਭੰਜ, ਚੀਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਸਰਦਾ ਪੂਰੀ, ਚੀਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਕਬੈ ਨਾ ਝੂਰੀ, ਅੰਤਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਦਿਓ ਰੰਗ ਲਾਏ, ਰਹਾਉ ਚੀਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਸਰਬ ਕੋ ਰਾਜਾ, ਚੀਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਾਜਾ, ਚੀਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਰੰਗ ਗੁਲਾਲ, ਚੀਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ, ਚੀਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਸਦ ਧਨਵੰਤਾ, ਚੀਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਸਦ ਨਿਭਰੰਤਾ, ਚੀਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਸਭ ਰੰਗ ਮਾਣੇ, ਚੀਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਚੁੱਕੀ ਕਾਣੇ, ਚੀਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਚੀਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਸੁਨ ਸਮਾਇਆ,
चीत आवै सद कीर्तन करता मन मान्या नानक भगवंता पैरो महला पंजवा। बाप हमारा सद चिरंजीवी भाई हमारे सद ही जीवी मीत हमारे सदा बनासी कुटुंब हमारा नी करवासी हम सुख पाया ता सवै सुहेले गुरपुरै पिता संग मेले रहाओ। मंदिर मेरे सब ते उच्चे देश मेरे बेअंता पूछे राज हमारा सदी निचल माल हमारा खूटा बेचल। शोभा मेरी सब जुगे अंतर बाज हमारी थान थनंतर कीर्त हमरी कर कर होई भगत हमारी सबनी लोई पिता हमारे प्रगटे मांझ पिता पुत्रल किन्नी सांझ। कहो नानक जो पिता पतीने पिता पूते कै रंग लीने पैरो महला पंजवा। निर्वैर पुरख सतगुर प्रभ दाते हम अपराधी तुम बख्साते जिस पापी को मिले ना टोई शरण आवै तां निर्मल होई। सुख पाया सतगुरु मनाए सब फल पाए गुरु ते आए रहाओ। पार ब्रह्म सतगुर आदेश मन तन तेरा सब तेरा देश चूका पड़दा ता नदरी आया खसम तू है सबना केराया। तिस पाणा सूके काष्ट हरिया तिस पाणा ता थल सिर सरिया तिस पाणा ता सब फल पाए चिंत गई लग सतगुर पाए। हराम खोर निर्गुण कौ तूठा मन तन शीतल मन अमृत बूठा पार ब्रह्म गुर पए दयाला नानक दास देख पए निहाला। पैरो महला पंजवा सतगुर मेरा बेमोहताज सतगुर मेरे सच्चा साज सतगुर मेरा सबस का दाता सतगुर मेरा पुरख बिदाता। गुर जैसा नाही को देव जिस मस्तक भाग सो लागा सेव रहाओ। सतगुर मेरा सर्व प्रतपाल है सतगुर मेरा मार जीवाल है सतगुर मेरे की वड़ियाई प्रगट पई है सबनी थाई। सतगुर मेरा तान नितान सतगुर मेरा कर दी बाण सतगुर कहो सतबल जाया प्रगट मार्ग जिन कर दिखलाया। जिन गुर सेव्या तिस पव ना ब्यापै जिन गुर सेव्या तिस दुख ना संतापै नानक सो दे सिमरत भेद पार ब्रह्म गुर नाही भेद पैरो महला पंजवा। नाम लैत मर प्रगट पया नाम लैत पाप तंते गया नाम लैत सगल पुरबाया नाम लैत अठसठ मजनाया। तीर्थ हमरा हर को नाम गुरु उपदेसया तत् ज्ञान रहाओ। नाम लैत दुख दूर पराना नाम लैत अतमूड सुगयाना नाम लैत प्रगट उजियारा नाम लैत छुट्टे जंजारा। नाम लैत जम नेड़ना आवै नाम लैत दरगह सुख पावै नाम लैत प्रभ कह सबास नाम हमारी साची रास। गुर उपदेश कयो एहो सार हर कीर्त मन नाम आधार नानक उधरे नाम पुनै चार अवर कर्म लोकै पतियार पैरो महला पंजवा। नमस्कार तां कौ लख बार एहो मन दीजै तां कौ वार सिमरन तां कै मिटै संताप होए आनंद न व्यापै ताप। ऐसो हीरा निर्मल नाम जास जपत पूर्ण सब काम रहाओ। जां की दृढ़ दुख डेरा टह अमृत नाम शीतल मन गह। अनक भगत जाके चरण पुजारी सगल मनोरथ पूर्ण हारी। खिन मैं ऊणे सुबर भरिया खिन मैं सूके कीने हरिया खिन मैं नथावे कौ दीनो थान खिन मैं निमाणे कौ दीनो मान। सब मैं एक रहा पर पूरा सो जापै जे सतगुर पूरा हर कीर्तन तां को आधार कहो नानक जिस आप दयार पैरो महला पंजवा।
मोहे दुहागन आप सिंगारी रूप रंग दे नाम सवारी मिट्यो दुखर सगल संताप गुर होए मेरी माई बाप सखी सहेरी मेरे ग्रस्त आनंद कर कृपा भेटे मोहे कंत रहाओ तपत बुझी पूर्ण सब आसा मिट्या देर भय प्रगासा अनहद शब्द अचरज बिस्माद गुरपूरा पूरा प्रसाद जां कहो प्रगट भय गोपाल ता कै दर्शन उसदा निहाल सर्ब गुणा ता कै बहुत निदान जां को सतगुर दियो नाम जां कहो भेट्यो ठाकुर अपना मन तन शीतल हर हर जपना कहो नानक जो जन प्रभ पाए ता की रेन बिरला को पाए पैरो महला पंजवां चितवत पाप ना आल के आवै बेसवा भजत किशने शरमावै सारो दिन समझूरी करै हर सिमरन की वेला बज्जर सिर परै माया लग पुलो संसार वा पुलाया पुलावन हारै राच रहया बिरथा व्योहार रहाओ पेखत माया रंग बिहाए गड़बड़ करै कौडी रंग लाए अंध व्यवहार बंद मंत आवै करण हार ना जी मैं आवै करत करत इव ही दुख पाया पूर्ण होत ना कार्ज माया काम क्रोध लोभ मन लीना तड़प मुआ ज्यो जल बिन मीना जिसके राखे होए हरे आप हर हर नाम सदा जप जाप साध संग हर के गुण गाया नानक सतगुर पूरा पाया पैरों महला पंजवां अपनी दया करे सो पाए हर का नाम मन वसाए साध शब्द हृदय मन माहे जन्म जन्म के किल विख जाहे राम नाम जी को आधार गुर प्रसाद जपो नित पाई तार ले सागर संसार रहाओ जिनको लिखिया हर एहो निदान सहजंदर गै पावै मान सुख सहज आनंद गुण गाओ अगे मिले निथावे थाओ जुगै जुगंतर एहो तत सार हर सिमरन साचा विचार जिस लड़ लाए लय सो लागै जन्म जन्म का सोया जागै तेरे भगत भगतन का आप अपनी मैं माया पे जाप जी जंत सब तेरे हाथ नानके प्रभ सदी साथ पैरो महला पंजवां नाम हमारे अंतरजामी नाम हमारे आवै कामी रोम रोम रव्या हर नाम सतगुर पूरे कीनो दान नाम रत्न मेरे पंडार अगम्या मोला अपरिया पार रहाओ

0: नाम हमारा भोजन पाओ, नाम हमारा मन का सुहाओ, नाम ना विसरै संत प्रसाद, नाम लै तो अनहद पूरे नाद। प्रभ कृपा ते नाम नौ निध पाई, गुर कृपा ते नाम स्यों बन आई, धनवंते सही प्रधान, नानक जा कै नाम निदान, पैरव महला पंजवा। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरे जी प्राण सुखदाता, तू मेरा ठाकर हूं दास तेरा, तुझ बिन अवर नहीं को मेरा। कर कृपा करो प्रभदात, तुमरी उस्त तो करो दिन रात, रहाओ हम तेरे जंत तू बजावन हारा, हम तेरे पिखारी दान दे दातारा। तव प्रसाद रंग रस माणे, घट घट अंतर तुम्हें समाणे, तुमरी कृपा ते जपिए नाओ, सा संग तुमरे गुण गाओ। तुमरी दया ते होए दर्द विनाश, तुमरी माया ते कमल विगास, हम बलिहार जाऊं गुरुदेव, सफल दर्शन जाकी निर्मल सेव। दया करो ठाकुर प्रभ मेरे, गुण गावे नानक नित तेरे, पैरो महला पंजवा। सब ते ऊच जाका दरबार, सदा सदा ताका जोहार, ऊचे ते ऊचा जाका थान, कोट अग्गा मिटै हर नाम। ते सरनाई सदा सुख होए, कर कृपा जाको मिले सोए, रहाओ जाके कर्तव लखे ना जाहे, जाका प्रवासा सब घट माहे। प्रगट भया साधु कै संग, भगता राधे अंदन रंग, दें दे तोट नहीं पंडार, खिन मैं थापो थापन हार। जां का हुक्म ना मिटै कोए, सिर पातशाह साचा सोए, जिसकी ओट तिसे की आसा, दुख सुख हमरा तिसी पासा। राख लीनो सब जन का पड़दा, नानक तिसकी उस्तत करदा।
1: You are tuned to Radio Sai Global Harmony, bringing you 24 hours a day the message of love of Bhagavan Sri Satya Sai Baba.